निर्धन को पाले निर्धन को पाले निर्धन को पाले हाय हाय निर्धन को पाले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवा वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघदे हां अज पंजवा निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे

मन अलसिया। ए मन आलसी क्यों है? ए आलसी मन अपने मालिक अपने परमेश्वर नु क्यों नहीं याद करता? इस मन दे आलसी होने का कारण की? इस आलसी मन ने अपने साईं नूं विसार के कैसे साधन बनाए हुए ने? पहला विचार करनी पड़ेगी मन दे आलस होने का कारण की। गुरसिख प्यारे, मन आलसी होंदा है उदों जदों ए मनुख सिर्फ शरीर दे सुखां दे नाल जुड़दा है। जितनी देर तक कोई शरीर दे सुखां नाल जुड़िया होया है, जिवें जिवें शरीर दे सुख वधदे जाणगे, जिवें जिवें शरीर दे सुखां दे साधन वधदे जाणगे, मन आलसी हुंदा जाएगा। मिसाल दे तौर ते जदों पिछले समें दी गल चेते करी दीए, साडे बजुर्ग सवेरे अमृत वेले दरियावां ते नदियां ते ठंडे पानी नाल नहाउंदे।

कोई असमेध यज्ञ करे, अपने बराबर तोल के, अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे, कोई प्राग दा इशनान कर लवे, पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते। जप सतनाम श्री।

पर कमाल होगी तू कीमत नहीं जानदा, तू जानदा ही नहीं तेरी की कीमत है, कुछ भी नहीं। उस शरीर दी की कीमत है, कुछ भी नहीं, वो तो मिट्टी है। तू जानदा नहीं जब

ये जाएगा तन नाम अमोला। तन ते पाया होया चोला भी नाल नहीं जाना, छड़ जाएगा। ये जाएगा ए हर का चोला, देखो सतनाम श्री।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

परमेश्वर, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसाहां देसा, जिस पास बैठे हैं सोइए सबना दावेसा, जिद कोल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कोल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी है, कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रशादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

जाओ तिलकू नू फड़ के मेरे कोल ले आओ। ए पूत प्रेत जोगी ने जड़े छड़े भाई तिलकू दे घर वाल तुर पे। भाई तिलकू बुआ बंद है चौंकड़ा मारे है मन गुरु दे चरणा दे नाल जुड़े है ते जपजी साहब दा पाठ पै कर दे इन्ने नू दरवाजा खड़के इस तरह लग्या जिवें कोई दरवाजा भन रहे है आवाजा आ रही ने तिलकू असी तेनू मार

खुशबू आकर काया पाई दिल को दरवाजा खोल जोगी आप तेरे द्वारे आया पर हुन पाए दिल को ने बुआ नहीं खोले फिर क्या पाए दिल को बुआ खोल जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है चल के लंगर शाक मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया पाई साहब ने बुआ

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआता खोल, गुरु दा वास्ता सुने पाई दिल को जी उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरना तू कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा, बुआ खोले सामने पाए तिलकू दे।

जोगी जेड़ा सी कहन लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा जेदे चरना दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरना दे नाल तू मन जोड़े है जे स्वर्ग नू ठुकरा दिता उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरना नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे मेरे गुरु मेरे नहीं होते सारे सांझे ने।

इस जोगी ने पाए दिल को देनाल पाई, पाए दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया, हुण पाए दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाए दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल।

जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने, उस गुरु की उम्र किन्नी कै? पै दिल को कहन लगे, पिता का जन्म के जाने पूर्व दुनिया दे ही

इनाम दा बोल है जिड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बैंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल झोलियां भर दे उन्हां गुरसिखां

अचानक तूफान आ गया। लोग सारे डर गए। मलाह नूं कहन लगे, बचण दी कोई उम्मीद है तूफान।

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, एनु चुके सुट दे। जद सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोका ने मेनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे, साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनूं चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा ओ कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओदे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदों इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा भाई तिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की जोगी तर गया इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा जन्म सौर जा।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी है पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिल

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान। कट कट के अंतर की जान तू भले।

जाते, हर बिन रह ना सको एक राती, धर्मा दे ठाणे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी दे खोल कुवार हो रह ना सका। परमात्मा तू ते जानना है कि मैं तेरे दर्शना तो बिना रह नहीं सकता, फिर देरी क्यों, विच पड़दा क्यों, विच दीवार क्यों, हे परमात्मा इसनू हटा दे, मैं इतना चिर सबर नहीं कर सकता, मैं ते जीवित रह नहीं सकता, मैनू जल्दी दर्शन दे दे, ऐसी कृपा मेरी ते कर दे। असी भी ऐसी ही बेनती करनी कि परमात्मा हर बिन रह ना सको एक राती, ऐसा जीवन बन दे एक नागा भी ना पवे, रोज गुरु दरबार विच आई। वो तो ताई हो सकता ना जे मन अंदर ऐसी तड़प होवे, जे ऐसी लगन लग जाए कि परमात्मा जे तेरा गुरु दरबार नहीं तो कोई भी चीज नहीं, जे तेरे दर्शन हो गए ने तो सब कुछ सफल। ऐसा नियम बनाना है, ऐसा मन अंदर अकीदा करना है कि सतगुरु हर बिन रह ना सको एक राती, ज्यों बिन अमल है अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। ऐसी सतगुरु साडे ते मेहर कर दे। साहबान च बना उपदेश दिता, एक कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। परमात्मा एक रात ते किते रहेंगी जी, एक कड़ी भी मैनू दर्शन ना ना होण ते मेरे लिए ते कलयुग सामने आके खड़ा हो जांदा, मेरी हालत किहो जी हो जांदी है। परमात्मा ए दर्शन मेरे कोल ना खो, मेरे ते दर्शन दी कृपा करी रख। आओ असी बेनती करनी है।

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ये अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ये तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवे, नाम रूपी रस प्राप्त कर। ओ अमल पी जिहड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रहे, सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिहड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

सिमरण कबूल चूरे भवके सिमरण कारज पूरे जिस नाम हृदय सोई वड राजा। नाम कितनी उची दाद है। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय से पूरे काजा। जिदे को नाम है ना संसार तो सब तो वड्डा राजा कोई भी, जिदे को नाम है इस पूरे काजा, उदे कार्य भी सारे पूरे हो जाते ने। ते नाल ए भी क्या गया है, कह कबीर निर्धन है सोई जा कह हिरदे नाम ना होई। ओ ते निर्धन है जिदे को नाम नहीं, जिदे को सिमरन नहीं, ते जिदे को नाम है सिमरन है, ओ राजा है, उदे कार्य भी पूरे नहीं।

0: राजा जिस नाम हृदय से कोट धन पाए नाम बिना जीवन व्यर्था जाए प्रभ कै सिमरण कार्य पूरे जो जन तुमरी भगत करण ते तिनके काल सुवारता तिनके काल सुवारता
1: भक्ति करने वाले अधिकार परमात्मा आप कर दे विच करता पुरख खलोवा बाल नाविंगा होवा ओ कारण ते आप विच हो के कर दे परमात्मा अकाल पुरख कबीर कबीर दी बच्ची दा विआह है घरवाली कहन लगी महाराज तारीखां बहुत नेड़े आ गईयां ने ते कुछ इंतजाम करो बच्ची दा विआह है ते कुछ बना लईए जो बच्ची दा विआह चंगी तरह कर सकी अज कबीर जी कहन लगे लोई लिया घर विच जो खेस दरियां रेजे कत्ते पैन लिया मनु ते बाजार जाके वेच आना अद्धे आप फड़ लै ते अद्धे कमाले नू फड़ा देते बाजार चले गए बाजार जाके खलो गए सवेर तो लै के शाम पै गई कोई गाहक ना आए की वेखिया अकाल पुरख ने आप ही विपरदा रूप धारण कर लिया ते आ गए आके पुछ कीती पाई कबीर किथे रहिंदा ते कबीर साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहन लगे महाराज मैं ही कबीर हां तू कबीर है आख्या जी हां मैं कबीर हां ते कबीर सुनिए तू बड़ा दानी नाम जपन वाला है सिमरन करने वाला है इंज कर सर्दी दा मौसम है कोई दान दे ते कबीर कहने लगा वाह अकाल पुरख सवेर तो लैके शाम हो गई कोई गाहक ते नहीं आया बड़ी कृपा कीती जे जो आप ही चल के आ गए बड़ी मेहर कीती आप ही चल के आ गए अज आखिया लो महाराज ए बस्तर मेरे को लै जाओ बस्तर दे दिते अज बिपर ओब्रह्मण तुर पे उथे पहुंच गए जिथे कमाला खलोता है कबीर दा पुत्र कमाले दे कोल आके आखिया धन कबीर कमालिया तेरे तेरे पिता ने ए बस्तर दा दान दिता है तू भी कुछ दान कर तू भी कुछ दे बड़े दानी दा पुत्र है अज आखिया जी मेरे पिता ने दान कीता है ते मेरे को जो कुछ है वो भी तुसी लै जाओ अज वो भी दे दिता कबीर साहब जी घर आ गए लोई पुछती महाराज अज की वट के ले आए हो आखिया भागवान ने अज मैं वट के ते कुछ नहीं ले आया पर जिन्हों दे आया ना ए मैनु निश्चा यकीन है मेरे कार्ज वो आप करेगा वेखो भगत नु निश्चा यकीन होना ए जरूरी अज थोड़ी देर बाद कमाला भी आ गए कमाले नु पुछ कीता हां कमाले हां तू की लैके आए आखे बापू जिन्हों तू दे आया उन्हों मैं भी दे आया हस पे आखे चंगा ठीक है जिन्हों मैं दे आया उन्हों तू दे आया चल ठीक है जिन्हों दे आया फिर कार्ज भी आप करेगा असी क्यों चिंता करी असी क्यों फिक्र करी वो कार्ज आप करेगा प्रभ कह सिमरन कार्ज पूरे यकीन है सिमरन करने वाले ने भक्ति करने वाले ने जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता आज दिन तरीका नेड़े आ गई अकाल पुरख बिपर दा रूप धारण करके चले गए जाके कहंदे ने भाई बरात बहुत सारी लैके आया जे कबीर बड़ा अमीर है वो बड़ी तुहाडी सेवा करेगा वध चढ़ के आया जे घाटे विच ना आया जे बराती चंगे लैके आयो ते वो कहन लगे भाई असी ते सुनिया कबीर बड़ा कमजोर माली हालत विचों तन वालों बड़ा गरीब है आखे तानू किन्ने की है कबीर गरीब है जिस नाम हृदय सोई वडराजा जिस नाम हृदय से पूरे काजा ओ ते संसार दा सब ना वड्डा राजा है तानू किन्ने की है कबीर गरीब है ना पाई वर चढ़ के आया जी बड़ी सेवा करे बरात आ गई कबीर कमाले दी बांह फड़ी ते बाहर नू तुर पे आ पाई ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੇ
2: ਆ ਗਏ।
1: ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲੋਵਾ ਵਾਲਣਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਬੀਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਰਜ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਵਡਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੋ ਰਸਨਨ ਕੋਈ

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दियां गल्लां करदे ते बच्चे कठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दियां गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। ते जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नू कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नू वेखना। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहन वाले ने, वो जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पेन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए,

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। एक गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी हुई है। जद तक वह दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान तां हो सकती है, आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबां ने बाणी विच कहा।

सो ये बचन धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। हुण तुसी ए देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इसनू कर दिखाया है। हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नू थां है, जात नू बिल्कुल नहीं। मैं जात नू मनदा ही नहीं, केवल जोत, क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है। हे गुरसिख, तू जिदे अंदर वेखे जोत वेख, क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजे है ते अपनी जोत टका के, जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे। मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे, केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे। अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया, असी जात वेखने आ, परमात्मा कहिंदा जोत वेखो। जात तक नहीं आ, जोत नजर नहीं आउंदी, जोत छिप जांदी है। इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है, गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए, पातशाह तुसां ने जोत वेखी है ते सी भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा, असी जोत वेख सकी। साध संगत, इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह, इथे ही रहने वाला ऐसा एक मनुख, एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह ज्यादा मिलते कहते पुरखा सुना की हाल है, किधर चले हैं, की काम करना है। कह लगा महाराज काम की करना है, मैं लोगों की उस्तत करना। ना की है तेरा, कह लगा जी दाना। साहब कह लगे तेनू पता है दाना किनू कहते ने, कहते नहीं महाराज, कहिंदे ने दाना कहिंदे नू सियाणे नू बुद्धिमान नू, कि तू सियाणा हो के उस्तत लोकां दी करने, आ मैं तेनू सच्चे मालक दी उस्तत करनी दसां। कहन लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना, तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਗਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ

ही परमात्मा। मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने कानपुर कोलों बर्दाश्त

की पूछे जात कह दया सिंह, दया सिंह वो मेरा सिख नहीं है, मम सिख नहीं, जन्म गवायो वाद। उन्हें वाद विवाद विच पै के जन्म गवा दिता है। पर की वेखदे आं अज ते जातां दे नां दे गुरुद्वारे खुल गए ने, ऐ फलाणियां दा गुरुद्वारा है, फलाणियां दा गुरुद्वारा है। ओ गुरु दा गुरुद्वारा ही नहीं रहा, जे गुरु दा गुरुद्वारा ही नहीं है, जातां दे नां ते ही बनाने ने ते की फायदा है। ओ साध संगत आओ, एक दूजे नूं प्रेरणा दईए, एक दूजे नूं अपना समझिए, जोत वेखण दी कोशिश करिए। जात दी दीवारां ने सानू बहुत दूर कर दिता है, पास खड़िया सी जोत नहीं वेख सकते। इसलिए सतगुरु दा उपदेश कमाईए, जे जगदी जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन दिओ, ते अज तो सारे प्रण करो कि आपां अपने अंदर भी ते दूसरे अंदर भी इको जोत जाणांगे। अज प्रचार ही आपां ए करना है कि भाई आओ गुरु नानक दे सिख कवांदे हो ते गुरु दा बचन मन्नीए। गुरु दा बचन की है, सारे मिलके कमाओ जी। कीर्तन दी समाप्ति है।